जीरो क्या करूं, मैं हूं पगला, मेरा मन वहाँ पागल और आप भी पागल हैं. सो लेट मी प्ले दिस पगला सॉन्ग फॉर प्रमोद भाई. प्रमोद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली विशेस टू ऑल आवर लिसनर्स. एंड वर्षा बहन, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर माई फ्रेंड प्रमोद भाई. एंड हक साहब, थैंक्स फॉर विजिटिंग हिम.

0: चांद की ओर मत देखना चांद इज हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स आई एम श्योर बट समवन हु इज नॉट हिडन फ्रॉम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया इज माय फ्रेंड एंड शायर आजम हक साहब एंड थैंक यू हक साहब फॉर विजिटिंग आवर बड़ी प्रमोद भाई एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड यू कैन टेल मी मोर अबाउट दैट सॉन्ग आई जस्ट प्लेड एक्चुअली You probably don't remember either, but you did remember the music director who came in from the Prithvi Theatres to provide the music for the first film of Raj Kapoor under the RK banner, and that was Ram Ganguly. And Ram Ganguly had a couple of great musicians in his orchestra, Shankar and Jay Kishan. So Raj Kapoor thought, why not we just use them? They are much more advanced and much more capable composers. So then later on, in most of the RK films were done by Shankar and Jay Kishan. And speaking of our Shair e Azam, let me put him on and see what he has to say about the recent departures of... of course, Suman Kalyanpur, who passed away last week. That was another loss for the world of Bollywood. And we are giving tribute to Raj Kapoor. And if you can think of a combo tribute to Raj Kapoor and Suman Kalyanpur, give me a call. But let me put our friend Mr. Huck. Huck Saab, ajaiye. Hello. हेलो आ गए आप हाँ तो आई
1: आवाज आ रही है
0: हाँ जी आपकी आवाज हमेशा आती है जहाँ भी जाते हैं
1: नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने का और आपकी वजह से आज मैंने प्रमोद भाई और वर्षा बहन के दीदार किए
0: हाँ दैट्स दैट वाज वेरी नाइस ऑफ यू टू गो आउट ऑफ योर वे टू से हाय टू हिम यस
1: I made it there and I sat there for about hour and a half.
0: Okay. Yeah, we visited them yesterday and he's doing better, thank you.
1: Yeah, he's getting better.
0: Yes, and we wish the best for your brother, Dr. Huck.
1: Thank you.
0: And also our old buddy, Tayyab Ji. Tayyab Ji is also not...
1: Or inke Kanta Ji ke Ram.
0: Ram is really...
1: I talked to Kanta Ji this morning.
0: Oh, okay, good.
1: And he just asked us to pray for his...
0: Yes.
1: So that his life should be easy because he's on the, terminally.
0: Yes.
1: And at this stage, nobody can say, but when God keeps you alive...
0: Yes.
1: He has been there 4 days without water and food.
0: Yeah, I know.
1: Breathing.
0: Yeah, one of the best people. One of the best people is taken away from us. But
1: Kanta Ji is passing through a very difficult time.
0: Yes, she's a tough woman.
1: So composed.
0: Yes, she's very, very strong woman.
1: Very strong.
0: Yeah, and I salute her and her family and Shalini and Ram. We wish him the best. For
1: what can you say? Yeah. But the thing is that आपने भी राम गंगुली की म्यूजिक का जो गाना आप सुनवाया
0: जी फिल्म थी आग
1: चांद की ओर
0: यस
1: जी आग तो मुकेश साहब का एक लतीफा है ना कि भाई वो मुकेश से किसी ने कहा कि भाई वो हॉल में गए कि मराठा मंदिर और ये वो कहने के नहीं भाई हम इस फिल्म को नहीं लगाएंगे क्योंकि लोग कहेंगे अरे आपके हॉल में आग लग गई लेकिन इसकी ट्यून जो है अगर आप तो म्यूजिक के जीनियस है
0: नहीं भाई
1: मुझे लगता है वो शाहजहां फिल्म का जो गाना था ना
0: हाँ मैं भी वही सोच रहा था
1: इंस्पायर्ड है
0: यस यू नो आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग आई गेस इन दोज डेज दोज क्लासिकल सॉन्ग्स वेर प्रीटी मच similar because the ragas were used
1: bilkul ek dafa kya hua ki wo jab मदन मोहन की जो कंपोजिशन थी ये तुझे तुझे क्या सुना हूँ वो है ना, तो वो सज्जाद साहब की म्यूजिक
0: जी
1: हवा ये रात ये
0: चांद जी जी जी एब्सोल्युटली राइट.
1: सज्जाद मेट मदन मोहन देन ही सेड डू यू कॉपी मी, उन्होंने कहा कि सज्जाद साहब मैं किसी अरे गरे की कॉपी नहीं कर रहा हूँ,
0: आपकी
1: हुसैन की कॉपी कर रहा हूँ.
0: क्या बात है, क्या बात है. आई थिंक he was okay with that.
1: तो ऐसा है कि एक राग पे कई ट्यूनिंग होती है और जो है राग कई हजार जो है सॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन सुर तो चूंकि सात हैं.
0: हाँ जी,
1: और नौशाद साहब कहते थे आठ सुर हैं, आठवां सुर मोहम्मद रफी साहब है.
0: हाँ, क्या बात है. और
1: ठीक है, थैंक यू. आप बोलिए.
0: नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि वी हैव पीपल लाइक मुकेश एंड रफी साहब एंड यू नो दैट दे मेड आवर बचपन सो सो सो एंजॉयबल.
1: नो
0: एब्सोल्युटली राइट. एंड पीपल
1: गाने वाले कोई नहीं है, तो गाने वाले जो है उनके घर वालों को उनके नाम नहीं याद है. पुरानी ये पुराने लोगों का क्या याद रहेगा.
0: लेकिन
1: ये कि आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कि आप जो है उसको रिवाइज करते हो
0: और
1: राइम करते हो.
0: थैंक यू, थैंक यू.
1: लोगों को ये एहसास दिलाते हो कि भाई ये म्यूजिक की दुनिया. जैसे इसी दौर में आपने राज कपूर का बोला तो परवरिश फिल्म में
0: दत्ताराम, नॉट एन दत्ता, दत्ताराम.
1: अच्छा, तो उसमें जो दत्तू का ठेका था.
0: हाँ, ये शंकर जयकिशन की ऑर्केस्ट्रा में था.
1: हाँ, वो पहले वो उसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे.
0: यस,
1: उसके साथ काम करते. बट दैट ठेका देखिए ना आप, रमैया वत्ता भैया में.
0: हाँ,
1: वो बहुत फिल्मों में है.
0: हाँ, यस यस, ही वॉज अ तबला मास्टर, यू नो. ही वॉज yeah, Dattaram from Goa. You know, he was in Goa. And I don't know whether I have told this story before, but A.R. Rahman, the great new composer of our time, he heard about this Dattu Ka Theka and he loved that. And he said, who is the person responsible for this? And I would like to meet him. And he searched and searched and he found poor Dattaram in a little hut in Goa. And he
1: hibernation mein chale gaye the.
0: Ha ji,
1: the tendency of the Bollywood, you know.
0: Yeah, I know. They forget.
1: Qadar nahi
0: thi. Yeah.
1: Bilkul. Bahut tragedy hai. He was a genius. Bahut lambe aadmi the.
0: Aha.
1: Aur lambe bahut kam hote hain lambe music.
0: Yes, and you know what, there's a lot of influence of Goanese Portuguese music because a lot of Portuguese और अभी अभी हमने सुधा मल्होत्रा का भी यू नो लॉस लिया. शी वॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज व्हेन शी सिंग, शी साउंड्स लाइक लता मंगेशकर. एंड a lot of people even made mistakes on the radio saying, oh, this is a great song by Lata Mangeshkar. But in fact, it was sung by none other than Suman Kalyanpur. She was a beautiful singer, very innovative as well as her voice was.
1: Very attractive.
0: Yes.
1: Suman Kalyanpur was in 1956. She started
0: Mahmood.
1: She was breaking through. ये के ये लोग बड़े लोग थे यार.
0: yes.
1: तो कितना ऑपोजिशन हुआ लता मंगेशकर लेके.
0: आई नो
1: न्यू लता मंगेशकर.
0: यस यस यस,
1: बट स्टिल शी कंटिन्यू. और नौशाद साहब ने उनको फिल्म साथी में यूज किया. साथी के सारे गाने जो थे वेस्टर्न म्यूजिक पे थे, इसलिए कि वो जो साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि या तो हम रफी से गवाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई रफी साहब तो आए नहीं, मुकेश से गवाऊंगा.
0: यस,
1: और जो जो उन्होंने म्यूजिक दी है उसमें आप उसको ध्यान से सुने, अगर एक छोटा सा टेबल लैम्प जला के और साथी की म्यूजिक सुने,
0: इज इट अमेजिंग.
1: because usme that makes a difference, because there is a difference.
0: Yes.
1: And loneliness, solitude is the joy of being alone.
0: Yes, and I really enjoy interaction from people like yourself, because this is why we do this program, so people don't forget the contributions of those mega personalities, you know. Yeah. So or bataiye Sudha Malhotra ke bare mein, you know, we
1: Sudha Malhotra dekhiye bahut talented thi aur bahut literate aurat thi. Sahil sahab ke sath jo bhi raha na, he or she has to be literate.
0: Yes,
1: uska jo hai wo itna vast jo hai wo experience bhi tha, aur apna uska jo aur Sahil sahab chahte the ki unki jo ghazlein hain wo Sudha Malhotra gaaye.
0: Yes,
1: he was involved, I won't say love with her, because Amrita Pritam se unka chal raha.
0: Yeah, Sudha Malhotra is somebody else that also kind of got a little neglected because of the kingdom of Lata Mangeshkar, you know?
1: Bilkul, wo monopoly thi.
0: Yeah. But anyway, I talked about Suman Kalyanpur many, many years ago, and somebody from New Jersey was a relative of Suman Kalyanpur. And and they called me, and they appreciated that we remember.
1: Was he a maternal relative or paternal? Because maternally, she was from Bengal.
0: Yeah, yes.
1: She was born in Bangladesh.
0: Correct. Dhaka.
1: She came to Bombay, I think, in 1943 or something. No, 37 she was born.
0: Right.
1: But she came in late 40s. And she married this Mr. Kalyanpur.
0: Yes. Hak Saab, is always a pleasure listening to you and rekindling all the memories. And I'm going to play this song, one of my all-time...
1: We must pray for Vinod Bhai and Kanta Ji,
0: Ram Ji. Yes.
1: And those who are sick.
0: Yeah. And of course, aapke brother or aap yourself and everybody. So this is, you know, as I always say, a good melody is a medicine for all those maladies.
1: All the music lovers, they should be respected and valued.
0: Right. So let me play this Manna Day classic for Mukesh, for Raj Kapoor, that is. Yeah, and... of course, a classic hit song by one and only classical singer Manna Da. Laga.
1: Manna Da se maine yahan mila tha.
0: Haan, hum bhi mile the aur inki concert mein gaye the.
1: He was introducing a Bengali girl. She was singing. She was very young. But that tendency he had to nurture the new talent.
0: That is great. Well, time is coming up for a break, but let me play a little bit of this long song. And of course, thank you always for being with us and making my day.
1: Thank you.